0: हैप्पी हैप्पी फ्राइडे क्रैशेज, कैसे हैं? रेडियो केजे का साथ है, मैं आपका साथ आरजे क्रैश। यस, आफ्टर अ स्मॉल वेकेशन हम वापस आपके साथ जुड़ चुके हैं। क्या आपने हमें मिस किया? हमने तो ज़रूर आपको बहुत मिस किया है। और आज हम आए हैं बहुत सारे स्टोरीज लेकर आए हैं, इसके साथ साथ यूजुअल है रेडियो केजे का जो म्यूज़िक है ये भी, और ऑफकोर्स हमारे साथ आज एक गेस्ट भी है। कौन है? बहुत ही जल्द इनसे भी आप मिलने वाले हैं। वी हैव कपल ऑफ गेस्ट्स टुडे, सो इट्स गोना बी अ फुल ऑन वन आवर शो। अगर इफ़ यू हैव जस्ट जॉइंड अस ऑन फ्रीक्वेंसी, डू नॉट गो एनीवेयर फॉर वन मोर आवर। पर चले आपकी प्यारी दुलारी आरजे जीबी जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है कृषि, ये भी काफी जल्दी चला गया लगता है। और जितने भी लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी पे जुड़े हैं, आप सबको गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज के साथ आपकी प्यारी, आपकी दुलारी, सीधी सादी बोली वाली आरजे जीबी और फीजी के खट्टेपन के साथ आरजे क्रिश आपका रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं।
0: आज आपको पता है फ्राइडे का जो हमारा शो है, ये ब्रॉट बाय द मैन हिमसेल्फ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, नॉर्मली हमें इस प्रोग्राम को टाइटल देना पड़ता है ताकि प्लेन्स मीडिया और बाकी दुनिया भर में से जहां भी जो पॉडकास्ट ढूंढे उनको पता चले। तो आज का पॉडकास्ट का हमने नाम दिया है जगी भाई इन द हाउस। जी हाँ, जगी भोपाल फ्रॉम अरिस्टो रियल एस्टेट हमारे साथ वापस शामिल हो चुके हैं। आप घर लेने के लिए सोच रहे हैं, घर बेचने के लिए सोच रहे हैं, यार कितने सालों से एक ही घर में रहोगे, नया घर लेना चाहिए ना? तो ये पूरी जानकारी, व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, ये सब जानकारी आज हमारे साथ हम शेयर करने वाले हैं। इनके साथ साथ हमारे जो बाकी स्पॉन्सर्स हैं इनको भी हम याद करते चलते हैं। न्यूजीलैंड क्लिनिकल मास्टरी, अगर आप इफ यू नो समबडी हु वांट्स टू मूव टू न्यूजीलैंड एज अ नर्स और इस फील्ड में, डेफिनेटली आप न्यूजीलैंड क्लिनिकल मास्टरी इनको संपर्क कर सकते हैं। इनकी पूरी जानकारी या वीडियोज या इनके साथ साथ वेबसाइट सारे रेडियो केजे के फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा। इको ट्रेवल्स जीबी जी, जो वियतनाम से अभी हम जाकर आए हैं, दे हैव बीन अ बिग हेल्प।
1: जी हाँ, बिग थैंक यू टू चन्ना रेड्डी जी फ्रॉम इको ट्रैवल्स। हमारा ट्रैवल हमेशा इजी करने के पीछे इको ट्रैवल्स का ही हाथ है। पिछले 5 साल से ये हमारा 10वां कंट्री था जहाँ हम ट्रैवल किए थे। एंड थैंक यू सो मच इको ट्रैवल्स। अगर आप भी ट्रैवल के शौकीन हो, अगर आपको भी अपना आइटिनरी, आपको भी अपना फ्लाइट टिकट्स बुक करना है, तो कॉन्टैक्ट इको ट्रैवल्स राइट नाउ।
0: रीमिग्रेशन, यस, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आपके फ्रॉम ओवरसीज यहाँ पर मूव होना चाहते हैं, और इफ यू आर हियर ऑन अ वर्क पेमेंट, ऑन स्टूडेंट वीजा, ऑन अ टूरिस्ट वीजा, और आपको न्यूजीलैंड का पक्का बनना है, तो आपको संपर्क करना है देव कंसारा फ्रॉम री इमिग्रेशन। यस, इमिग्रेशन की पूरी जानकारी, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, री इमिग्रेशन इज द नेम टू रिमेम्बर।
1: आज ही हम बात कर रहे थे कोरिया के बारे में और साउथ कोरिया के बारे में, जहां पे स्किन केयर इतना पॉपुलर है। और जितने भी लोग हमसे पूछते हैं जीबी जी आपके स्किन का राज क्या है, एक ही जगह है, टच एंड ग्लो। क्रिश जी, उसके बाद टच एंड ग्लो। सो डू कॉन्टेक्ट जस जी फ्रॉम टच एंड ग्लो फॉर योर स्किन नीड्स।
0: जी हाँ बिल्कुल, टच एंड ग्लो। और टच एंड ग्लो से आगे बढ़ते हैं, एमसी केयर न्यूजीलैंड, मनीष कम्युनिटी केयर न्यूजीलैंड। यार सबके घर पे कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ आप काम पे बहुत बिजी होते हैं, यू नीड समबडी टू लुक आफ्टर द एल्डरली, यू नीड समबडी टू लुक आफ्टर द किड्स, और जनरली यू नीड समबडी टू लुक आफ्टर समवन। सो एमसी केयर, ये नाम जरूर याद रखिए। ऑल ओवर साउथ आइलैंड, इफ यू, अगर आपके घर पे कोई है जिनको केयर या हेल्प की जरूरत है, on a very reasonable price and very attentive or very reliable, MC Care NZ.
1: घर खरीदने और घर बेचने की बात तो हमने कर ली, लेकिन मॉर्गेज का फंडा कैसे सॉर्ट करें? कांटेक्ट कीजिए स्क्विरल मॉर्गेजेस को, नेथन मिगलानी एंड टीम।
0: जी हाँ बिल्कुल, फिनफेयर इवेंट प्लानर्स, बुकिंग अक्रॉस बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर्स, कल्चरल इवेंट्स, कॉर्पोरेट सेटअप्स, रिलायबल वेडिंग जोकर एंड सेटअप पार्टनर, अभी क्राइशेज में ऑलमोस्ट 99% जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर फिनफेयर इवेंट प्लानर्स, इनका जो डेकोरेशन आप देखेंगे, तो अगर नेक्स्ट टाइम आपका कुछ हो तो डेफिनेटली फिनफेयर इवेंट प्लानर्स, इनको आप संपर्क कर सकते हैं फॉर डेकोरेशन नीड्स। और इनके साथ साथ चले आगे बढ़ते हैं, शिवम अरोरा फ्रॉम एनजेड इंश्योरेंस। यार घर ले लिया, आपने मोगज करा लिया, घर का इंश्योरेंस भी तो कराना है, अपने आप का इंश्योरेंस कराना है, तो शिवम अरोरा

0: फ्रॉम एनजेड इंश्योरेंस. ये नाम जरूर याद रखिए. पीपी प्रोडक्शन वीडियोज एंड फोटोग्राफीज के लिए नाम जरूर याद रखिए. नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर पे कोई फंक्शन है, अच्छे फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की जरूरत है तो पीपी प्रोडक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिक एथनिक कलेक्शन. रवि जी, आज आप एथनिक वेयर में आए और यूनिक वेयर में आए.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सो जितने भी लोग, अभी दिवाली आ रहा है, काफी सारे इवेंट्स आ रहे, हरियाली तीज आ रहा है, तीज आ रहा है, अगर आपको भी यूनिक और एथनिक कलेक्शन चाहिए तो आपको जाना है मनप्रीत जी के पास एट यूनिक एथनिक कलेक्शन.
0: ग्लोबल फ्रेश, यस, वीकेंड इज हियर, शॉपिंग इज हियर, तो आप जा सकते हैं फॉर योर ऑल इंडियन ग्रोसरी, चाहे फ्रोजन हो चाहे फ्रेश हो, ग्लोबल फ्रेश आप जा सकते हैं. इनके साथ साथ डीजे गिडियन है, आपको एक अच्छे डीजे की तलाश में, जिनके पास वाइड नॉलेज है, चाहे फिर वो फिजी इंडियन सॉन्ग हो, पंजाबी सॉन्ग हो, गुजराती सॉन्ग हो, वो साउथ इंडियन सॉन्ग हो, डीजे गिडियन इज द नेम टू रिमेम्बर. करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल, घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल नीड्स हो आप इनको संपर्क कर सकते हैं. अभी लगभग सभी लोग फ्रॉम पेट्रोल दे आर मूविंग इनटू ईवीज, तो ईवी कनेक्शन आपको कराना है, करंट कनेक्ट इलेक्ट्रिकल. फॉर लास्ट नॉट लीस्ट जीबीजी, अगर एक अच्छे अकाउंटेंट की तलाश में आप,
1: बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, या अपने टैक्स रिफंड फाइल करवाना हो, एसबीजी अकाउंटिंग निलय धमलिया जी, इनको भी याद करना चाहते हैं हम.
0: चलो, इन सारे स्पॉन्सर्स को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. पर चले चलते हैं जिनके आसीन कृपा से हम अपना फ्राइडे का शो लेकर आते हैं. एंड ही इज हियर विद अस. वेलकम बैक मिस्टर जग्गी जी, हाउ आर यू? वेलकम बैक.
2: थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन. और आपने जो टाइटल भी दिया है मुझे, जग्गी भाई का, व्हिच इज
0: जग्गी भाई इन द हाउस,
2: जस्ट वांट टू कंफर्म, ये जग्गी भाई है, ये जग्गी काम वाली भाई नहीं है. राइट, जस्ट वांट टू कंफर्म. सो जग्गी भाई, सभी का भाई, विल हेल्प यू विद योर होम नीड्स एंड गार्डन्स एंड एवरीथिंग. एंड वेलकम बैक टू द कोल्ड न्यूजीलैंड. आई होप आपका ट्रिप भी अच्छा रहा हो.
0: बहुत अच्छा गया जग्गी जी, आप लोगों का आशीर्वाद है और तो अच्छा ही गया जग्गी जी. वैसे पिछली बार जब आप हमारे साथ शामिल हुए थे, तब से अभी तक हाउ इज एवरीथिंग बीन?
2: It's only been a month and everything, but ups and downs तो है ही है New Zealand market में and housing market में, but work is consistent. काम आ रहा है, हम busy हैं day in day out and yeah, चल रहे, सब चल रहे.
0: Wow, amazing. जग्गी जी आज well, fortunately हमारे साथ यहाँ पर अपने families के भी साथ आए. जग्गी जी, what is happening in right now in housing marketing है या generally real estate के market में क्या हो रहा है? Is it like, you know, that time of the year when it's busy, quiet, क्या हो रहा है? What's happening?
2: ये काफी factors हैं इस time. अभी दो हफ्ते पहले जब OCR increase हुआ है, so we felt जो buyers हैं, they're taking a step back, whether they're first home buyers या फिर whether they're investors. Yes, of course, people are downsizing, upsizing. So they're still getting appraisals, they're still getting some advice around what needs to be done and everything, but jo general sentiment hai buyers ka, it's on a quieter side, and I think it's only going to be worse for the sellers in my opinion, kyunki jaise jaise abhi weather khulega, summer spring aayega, to number of listings aur badh jayengi market mein, which means the buyers will have bigger muscles. But on the flip side, buyers ko ye bolna chahunga, don't wait too long. ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश होगा या प्राइसेस बहुत ज़्यादा टूटेंगे. येस, यू विल हैव बेटर चॉइस टू पिक अप फ्रॉम, बट इन द लॉन्ग रन जो घरों के प्राइसेस हैं वो हेल्ड करेंगे ही करेंगे. क्राइस्टचर्च हैज़ बीन इन अ वेरी स्वीट स्पॉट के यहाँ पे प्राइस करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, बट प्राइस हैज़ बीन स्टेबल एज वेल. एंड फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से टू सेलर्स, डोंट पैनिक टू मच. येस, स्प्रिंग एंड समर में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, बट दे नीड टू गेट समबडी लाइक अस टू गेट प्रोफेशनल एडवाइस के आपके घर का कितना मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. यू नीड टू गेट एडवाइस. एवरी होम इज डिफरेंट, लोकेशन इज डिफरेंट, मार्केट इज डिफरेंट. द वे वी सी थिंग्स व्हेन वी एंटर इनटू अ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे परसीव देयर हाउस टू बी. उन्होंने अपने घर का सेटअप उस हिसाब से किया है जो उनके लिए वर्क कर रहा है, बट वी प्रोवाइड देम एडवाइस फ्रॉम अ थर्ड आई एंगल कि बायर्स क्या चीज़ को कैसे परसीव करेंगे. सो देयर इज नो पैनिक, देयर इज नो रश, बट इट्स ऑलवेज गुड टू गेट सम थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एडवाइस व्हेन इट कम्स टू सेलिंग. And buyers, as always, just a phone call away. They can call me and we can have a discussion. No issues.
0: Jaggi ji, everybody in this day and time wants to save money. Agar aap ke services ko acquire karna chahta hai, are there any charges?
2: No. With us, so humara business kafi differently set up hua hai. We don't have offices in every single suburb in the country. We have one big office in Auckland and one in Christchurch. So, kyunki humare overheads kam hai, we can provide what no other company can. So, essentially, we are doing top premium marketing on our expense. So seller ke liye koi risk nahi hai. It's $0 upfront cost. Aur sabse badi baat hai ki agar for any XYZ reason ghar nahi sell ho raha ya seller ka situation change ho gaya, we don't recoup that marketing cost or the time and efforts

0: which we have put in doing the viewings and open homes and negotiations and everything. So it's close to $3,000 we spend on marketing, and that's big money, and we don't pass it on to the sellers. So unki jeb se paisa ya commission tab hi jayega agar ghar sell hota hai, aur sell bhi tab hoga agar offer acha aayega.
1: Jitne bhi log hamare sath Facebook live par jude hain, aap sabka bhi hum swagat karna chahte hain. Jis tarah humne kaha, it's Jaggi bhai in the house with Aristo Real Estate. Madhu Kumar ji, Kunyamol Kunyamol, Bharti Verma ji, Dilish Matthew ji, Kartika Dobhal ji, aap sabka हम रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं.
2: जी हाँ, बिल्कुल. जब हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, जगी जी, कहाँ से लाते हो ये आइडियाज? आपकी जो वीडियो आइडियाज कहाँ? इज इट लाइक, ऐसा लग रहा है कि आप कभी कभी, मैं बोलना चाहता हूँ, आप गलत फील्ड में भाई. आपको मार्केटिंग फील्ड में चलना है जहाँ आपको सिर्फ मार्केटिंग करना चाहिए. डायरेक्टली हमने आपका एक वीडियो देखा था, I think I shared it on Monday or last week, jahan par you are just taking a walk in some suburb and somebody asks you about aap kisi ek random person se milte hain,
0: right?
2: That's a very beautiful video, and I think
0: street pe usne bola ki maine ghar lena hai Lincoln mein, right? I see, yes.
2: So where does all these ideas come from?
0: जो आपने बोला कि मार्केटिंग की फील्ड में होना चाहिए, टू बी फेयर, रियल एस्टेट एजेंट का हमारा काम प्रेडोमिनेटली मार्केटिंग का ही है. वी आर मार्केटिंग आवर सेल्व एज एजेंट्स, बट वी ऑल्सो मार्केटिंग द होम इन अ फैशन दैट इट स्टैंड आउट. कंपनी का जो मार्केटिंग का स्ट्रक्चर है या टीम है, दे थ्रो सम आइडियाज, बट मेरे काफ़ी आइडियाज़ कुक होते हैं मेरे दिमाग में. वेन इट कम्स टू मेकिंग अ वीडियो ऑफ द हाउस इट सेल्फ, When I first started it, मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस किया कि ये बोलूंगा तो वो एक दो दिन प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब जाके मैंने किया तो वो पूरा खिचड़ी हो गया. सो आई थॉट इट्स बेटर टू कीप इट स्पॉन्टेनियस एंड कीप इट नेचुरल. सो ऑन द डे, ऑफकोर्स, जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, वी हैव डन द साइन अप मे बी फ्यू डेज अगो और वीक्स अगो, वी नो अलॉट अबाउट द लोकेशन, वी नो अलॉट अबाउट द हाउस. सो वो चीज़ें अभी 4-5 साल से कर रहे हैं, तो वो नेचुरल हो गया कि हमको पता ही है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना. सो On the day, I do a walkthrough of the house and the area, or kuch cook kar deta hun usi time mein. And I don't know whether you have seen my bloopers video. I do a bloopers video by the end of the year. और उस पर थोड़ा हंसी मजाक है, जब कुछ गलत बोला गया या कुछ फनी हो गया या बच्चों ने डांस कर दिया किसी वीडियो में, तो वो चीज़ों को मैं एज अ फनी, एज अ 2-3 मिनट का वीडियो रहता है कि bloopers 2022-2023, और then people get to see a human side as well. So ऑफ कोर्स, जो आप मार्केटिंग वीडियो देखते हैं, दैट इज़ पॉलिश्ड, बट उसके पीछे काफ़ी रीटेक्स होते हैं. कभी कभी कुछ फंबल हो गया, कुछ गलत बोल दिया, बट लकीली अनलकीली आई एम गेटिंग सो मच बेटर एट मेकिंग वीडियोज. तो मुझे लग रहा है ब्लूपर का वीडियो छोटा हो जाएगा.
2: Which I don't really want, though. That's what happens over time, na?
1: हमसे पूछो इस बारे में, क्योंकि हमारे मंडे रील्स के साथ जब हमने शुरुआत की थी, हमारे साथ वही हो रहा था. अभी 1 take 2 take में हो जा रहा है, बिकॉज सालों का एक्सपीरियंस है अभी. लेकिन
0: So it's good fun, it's part and parcel of it. Look, some people don't do videos. Generally speaking, traditional agency से आप घर बिकवाएंगे, आपके $300-400 तो वीडियो बनाने में ही लगेंगे. And we actually provide you as a package, photos, drone shot, video. The best thing is you're not spending a single cent. We are spending that money. So seller का तो risk ही नहीं है. Why would we not get work when they're getting the exact same marketing, good results for zero risk? और इसकी वजह से आई थिंक Aristo इज गेटिंग क्वाइट फेमस एंड पॉपुलर.
2: जगी जी, एक सवाल, हम आई थिंक पिछली बार भी अब जब आए थे, आई मिस्ड आउट ऑन दैट, एंड अगेन रिलेटेड टू मार्केटिंग का ही सवाल है, बिकॉज आई थिंक कोई भी अपना जो फोटोज एक अच्छा गुड टेकन फोटोज देखता है तो अच्छा लगता है. एंड हम ज्यादा करके मेजॉरिटी ऑफ वेल मोस्ट ऑफ द पब्लिक ये फोटोज या तो फेसबुक पे या इंस्टा पे देखते हैं या हमारे घर के दीवालों पे देखते हैं. आपको कैसा लगता है व्हेन यू आर ड्राइविंग अराउंड, नॉट जस्ट यू, वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड, और कहीं पर किसी बोर्ड पर जग्गी जी का एक प्यारा सा फोटो है, हाउ इज दैट फीलिंग नोइंग दैट इट्स जस्ट ऑन अ रैंडम स्ट्रीट समवेयर?
1: वी डोंट नो अबाउट देम, बट वी गेट वेरी एक्साइटेड आफ्टर यू जॉइंड अस एज अ स्पॉन्सर, क्योंकि जहां भी
2: अब नजर जाती है, लाइक यू नो, जिस स्ट्रीट पर से मैसेज ड्राइव करके चले जाते थे.
0: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है. सी टू मी, मैं तो उसको एज अ मेरे काम के तरीके से देख रहा हूँ, मैं उसको एज अपना बिजनेस देख रहा हूँ. एंड इट्स गुड दैट आई एम सीइंग Aristo एंड माई साइन बोर्ड्स एवरीवेयर, बट हाउ द जनरल पब्लिक परसीव्स इट, आई थिंक साइन बोर्ड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट things from where we get more business as well. Log generally perceive karte hain yaar Aristo's everywhere, Jaggi's everywhere, aur khas kar sell hone ke baad we put a massive sticker on it saying sold for flat fee commission, 12.5 plus GST flat fee commission. Wahan se humko kaafi leads aati hain, people are curious.

0: अभी तो काफ़ी लोगों को पता लग गया है कि हुआ वी व्हाट वी डू डिफरेंटली, बट जब पहले पहले जब लोगों ने देखा यार सोल्व फॉर फ्लैट फी व्हाट इज़ दैट अबाउट एंड दैट्स व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनीवन एल्स. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ आई कैन आंसर इट, बट फ्रॉम माय एंगल यार ये तो काम है मेरा, है ना, अच्छी बात है साइन बोर्ड लगे, बट द वे फैमिली इज परसीविंग इट, फ्रेंड्स आर परसीविंग इट, पीपल लाइक यू हु आर परसीविंग इट, और हाउ जनरल पब्लिक इज परसीविंग इट, it's a hard one for me to answer. I don't know, it's a different angle of looking at it,
1: but I think like I said ki everybody loves photos, and if especially if it's a good taken photos by a professional,
0: right. Yes,
1: so you know
0: yes,
1: your board pe aa jata hai, like sometimes when we see jab kuch ek promotional chahe Diwali or something aata hai jahan par apne videos ya apne photos ek bade se screen mein dekhte hain,
0: yes,
1: so where to from here Jaggi ji? Abhi at the moment I think you are on this, are you planning to go even much bigger behind a buzz on this massive screen around Christchurch?
0: See, एक तो होता है बिजनेस स्केल करना, बट एक इतना स्केल करना कि आप क्वालिटी को
1: डाउन ना करें,
0: डाउन कर दें, सो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस इन माय ओपिनियन.
1: जी
0: एक हिसाब से क्या है कि यू कैन एम्प्लॉय पीपल टू बी पार्ट ऑफ योर टीम, बट सी मेरा हमेशा से ये मानना है कि टीम को भी उस मेंबर को रखें जो क्वालिटी को या सर्विस को डिटेरियोरेट ना करें. So it's better to do less work, but do good work in my opinion.
1: Good, yes.
0: So, bus के पीछे फोटो लगाने में क्या है सर? वो तो पैसा ही देना है, फोटो लग जाएगा.
2: जी.
0: लेकिन अगर वो इतना बड़ा फोटो लगा के कल के दिन कोई क्लाइंट देखेगा कि यार इसने तो मेरा फोन ही नहीं उठाया, तो उस फोटो का फायदा क्या?
1: हाँ, disappointing ना.
0: So I know some agents are doing very well.
1: Expectations high हो जाता है ना once you do something.
0: Yes, I know some agents are doing phenomenally well, but मैं उनको कभी अपना घर नहीं दूंगा बेचने के लिए. Because I know that they're missing calls. They're not replying back to the text messages. They are not replying back to the emails. So that's one promise from myself to the general public. मैं एक भी मैसेज नहीं मिस करता, एक भी ईमेल का को कभी कोई आज तक नहीं हुआ कि ईमेल मिस हुआ हो या कॉल मिस हुआ हो. कॉल मिसेस होते हैं, 100% होते हैं. Sometimes we are in an appointment. Sometimes we are doing something else. But kabhi bhi aisa nahi hua that I haven't called them back.
1: You return.
0: So that's my promise. Whether I become massive or not, mera ye promise hai general public ko ki aapko service ya fir seller ko kabhi kabhi lagta hai yaar humne isko employ to kar diya hai, lekin yaar agar usne kisi buyer ka phone nahi uthaya to अरे सर मुझे भी बाहर का चिंता है, मुझे भी तो बाहर चाहिए, बाहर मिलेगा तभी तो घर बिकेगा.
2: जगी जी इस बात पे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप कभी फोन कॉल नहीं मिस करते, मैसेजेस नहीं मिस करते, या मिस कर देते हो तो वापस कॉल करते हो या मैसेज. अभी आपने रिसेंटली अपने आप को अपग्रेड किया विद अ सेल्फ ड्रिवन कार, हमने देखा आपके स्टोरी में एक सेल्फ ड्रिवन कार आपने लिया है.
0: यस.
2: Is that क्या बोलते हैं इंटेंशनल अप्रोच टू बाय अ सेल्फ ड्रिवन कार ताकि आप अपने फोन कॉल ना मिस करें?
0: जब आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई व्हाई नॉट यूज इट. सो वी हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट टेस्ला गेव अस सम रियली गुड ट्रेड इन वैल्यू फॉर अ प्रीवियस कार, और नया कार भी एक पॉइंट पे अफोर्डेबल हमको लगा. एंड सेल्फ ड्रिवन का उन्होंने पहले क्या किया, पहले इट वॉज अ $10,000
1: एक्स्ट्रा
0: वन ऑफ, और वो आपके कार के साथ रहेगा.
2: जी.
0: अगर आपने कार सेल कर दी है या कार राइट ऑफ हो गया, दैट इज गॉन. बट अभी उन्होंने क्या किया, उसको सब्सक्रिप्शन कर दिया, $160 a month. जब चाहिए लो, जब चाहिए नहीं लो.
2: जी.
1: Oh, that's
0: why
1: good.
0: Would you not?
1: Exactly. That sounds like such a good deal.
0: I am living in 2050. वो कैलेंडर से ऑटोमेटिकली मेरी अपॉइंटमेंट उठा लेता है कि कहाँ पे जाना है, वो खुद नेविगेट कर रहा है. एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस, आई एम सिटिंग ऑन अ प्लेन. सो कोई भी चीज अगर मेरा मेंटल प्रेशर को या फिजिकल लोड को कम कर रहा है, दैट मींस आई एम बिट मोर प्रोएक्टिव फॉर माय कस्टमर्स. 160 मंथ क्या है, ऐसे ही लग रहा है कि ड्राइवर रख लिया एक दूसरा. यस, यू स्टिल हैव टू सिट ऑन द ड्राइवर सीट एंड सुपरवाइज इट, बिकॉज इट इज टू अ पॉइंट वेयर इट्स रियली गुड, बट यू स्टिल हैव टू सुपरवाइज इट. सो एक तो मैं गीक हूँ, मुझे मजा आता है टेक्नोलॉजी में. सेकेंडली आई फील इफ इट इज रिड्यूसिंग माई बर्डन फिजिकली एंड मेंटली, तो मैं क्यों ना करूँ उसको.
1: But I think I mean like ये सारे चीज़ you know जैसे जो टेक्नोलॉजी है ठीक है, पर अगर फ्यूचर में यही टेक्नोलॉजी में अगर कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर हमारी जो यू नो मिसेस है ना, आपके मिसेस है, कुछ ऐसा सेटअप हो कि आप कहीं पर भी हो गाड़ी को बताए जग्गी को घर लेकर आओ.
0: वो तो हो ही रहा है,
1: आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप गाड़ी में बैठे भाई मुझे साइड पे जाना है. नो, 6 o'clock यू आर सपोज टू बी होम. गाड़ी भी मेरी बात नहीं सुन रही आज.
0: ये तो अभी आप लड़ाई करवाने वाली बात कर रहे हो, यहाँ बैठी है तो मैं बोल भी कुछ नहीं सकता. और क्या है कि उसके पास भी एक्सेस है, क्योंकि वो अपनी टेस्ला की आप देख सक रही है कि जग्गी

0: कह रहा है सो शी कैन एक्चुअली ट्रैक इट एज वेल, उसको भी है एक्सेस मेरी गाड़ी का. बट मेरे लिए तो आसान ही ना बोलना कि भाई अपॉइंटमेंट पे जा रहा
1: हूँ. यस, आई मीन लाइक टेक्नोलॉजी हैज गॉट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट यू नो जोक्स अपार्ट, आई थिंक इट आपके लिए स्पेशली आपका जो फील्ड है यू नो काफ़ी कुछ आपको ईमेल्स देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है. सो व्हाइल दिस इज सेल्फ ड्राइविंग, आई डोंट नो, आई डोंट हैव इट, कैन यू स्टिल गो ऑन योर फोन?
0: नो. No. लेकिन अगर कोई मैसेज आता है तो वो रीड आउट कर देता है.
1: अच्छा,
0: एंड यू कैन एक्चुअली रिप्लाई बैक विद योर वॉइस एज वेल.
1: ओह नाइस,
0: सो इट इज वेरी सीमलेस. हम चलेंगे सर ड्राइविंग पे कहीं कभी आपको टाइम मिले, आई नो यू आर वेरी बिजी पीपल, बट चलेंगे. टेक्नोलॉजी वाइज इट्स क्वाइट अहेड इन स्टफ लाइक दैट. इवन उस पे ग्रॉक भी है. So, you know, if I'm driving to one destination and if I say, hey, look, I want to maybe go to the supermarket and can you divert me? So, वो खुद ही navigate कर देता. It's just mind-bogglingly quite different. It's not to a point where you can pick up your phone and do, and that's what they're working on.
2: Yeah.
0: If fully unsupervised भी हो जाएगा. And if it's a very long journey, you can sleep and go. So that's what they're working on.
1: This sticking to technology, Jagi ji, do you think ki jaise abhi gaadi kahan se kahan aayi? There was a time ki you know, aapko usko remember aise jack karke start karna padta. And today we like
0: gharon ka machine bhi aajkal aise start.
1: Do you think when it comes to houses, do you think it will make a difference? कहीं पर जहां पर आप कोई बैठा है, somebody is sitting in Nelson,
0: yes.
1: और उनको क्राइस्टचर्च का घर देखना
0: yes.
1: है, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ वीडियो कॉल, आप एक 3D जहां पर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एक्चुअली वॉकिंग थ्रू द हाउस विद एजेंट, डू यू थिंक ऐसा टेक्नोलॉजी विल बी हेल्पफुल?
0: Partially, that technology is available at the moment. I don't know if you know much, but Aristo is the forefront of technology when it comes to real estate. So comparing to traditional real estate agencies, Aristo is Uber of taxis, जैसे Uber टैक्सी का हुआ था ना. सो हमारा जो सिस्टम है इंटरनल, मेरे पास, मैं पेन और प्रिंटर बहुत कम यूज़ करता हूँ. लिस्टिंग किया, फीडबैक फॉर्म किया, ऑफर किया, सारा कुछ ऐप के थ्रू है. सो दैट्स द एडमिन साइड ऑफ थिंग्स, और कोई भी कंपनी नहीं कर रहा. आई नो दे विल कॉपी इट इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, बट टेक्नोलॉजी वाइज इसका कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं है. लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको 3D वॉक थ्रू है. बेसिकली वी कैन अपलोड अ फोटो और अ फाइल ऑन टू द वेबसाइट,
1: दैट पर्सन कैन सी एज इफ ही इज स्टैंडिंग इन द हाउस,
0: जस्ट लाइक योर गूगल मैप्स. सो यू कैन टैप हियर एंड देन इट takes you there.
1: Huh?
0: So then you tap here and then it takes you to the second floor. So wo tech hai, but to a point our videos jo hai that does a good visual indicator, but 3D walkthrough aisa available hai. Lekin jahan tak agar aap baat bolo ke yaar AI ya technology agent ko khatam kar dega, I don't think that's going to happen anytime soon, maybe in the future. Kyunki dekhiye, buyer ko saste mein chahiye, seller ko bahut chahiye.
1: Ji.
0: Aur wo 7.5 lakh के घर का बायर 7 तक तो आ ही जाएगा. और सेलर में भी थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन जो लास्ट के 5-10 हज़ार में हैंडशेक करवाने में जो हमारा दम लगता है ना
2: जी,
0: जिसमें मेरे बाल उड़े हैं, वो AI नहीं कर पाएगा आज के टाइम पे, क्योंकि वहां पे वैल्यू दिखाना होता है,
1: को रहना पड़ता है,
0: सेलर को समझाना पड़ता है बाहर का सिचुएशन. इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर द सेलर, बट हर सेलर को लगता है कि उसका घर 50,000 ज्यादा है मार्केट में.
2: जी बिल्कुल.
0: एंड दैट्स वेयर वी शो देम, यार ये स्टैट्स देखो, ये कॉम्पिटिशन लिस्टिंग देखो, एंड ये इकोनॉमी देखो. लोग कोविड के टाइम पे तो कोई अंधा एजेंट भी बेच रहा था, बिकॉज दैट्स व्हाट द मार्केट वाज. लेकिन आज के टाइम पे बहुत दम लगाना पड़ता है.
1: जगी जी, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट हाफ एन आवर शो. आपके साथ पैस कैसे बात चला जाता है पता ही नहीं चलता है. चलो, आपको जाने से पहले अगर इफ जगी जी को गाना गिराना लगता है कुछ, इज बी मिसिंग समथिंग, इज ही गुड सिंगर, गा दीजिए भाई तब.
0: सर मुझे आता है पंजाबी रैप, आते हैं
1: गा दीजिए ना. हाँ क्यों नहीं भाई, अभी क्या है कि हम अभी इफ समबडी इज, कोई यंगस्टर बैठ के देख रहा, हमारे काफी पंजाबी लिसनर्स एंड फॉलोअर्स है यार, मैं ऐसे बंदे के साथ घर लूंगा या बेचूंगा जिसको रैप भी आता है. चलो भाई, फ्लो इज योर्स.
0: नहीं सर, आज रैप
1: अगली बार,
0: नेक्स्ट टाइम करेंगे. थोड़ा बाकी में मेरा जेन्युइनली गला खराब है, क्योंकि मैं सिद्धू भाई अभी नहीं है, तो मैं तो उनका कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा वो
1: कोई नहीं भाई, लेवल चाहिए भाई, अगले काफी दिनों तक स्टूडियोज आपका ही है. ऑफ कोर्स आपका, आपका ही है
0: 100%
1: जी भाई.
0: लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, 19th September को आप लोग रामायण को वो कर रहे हैं,
1: जहाँ पर आप अपने पूरे फैमिली के साथ आ रहे हो.
0: That's where I'm getting to. So 19th September को मेरी
2: बेटी का
0: बर्थडे है. So we would try our level best to come in, but if you can't, then we will see what can be done. What I'm proposing now is, मैं आपके फॉलोअर्स को, लिसनर्स को, 4 टिकट्स अपनी तरफ से करना चाहता हूँ. एंड आई डोंट नो हाउ वी वुड

0: जी बिल्कुल, अपना बना ले पिया। वेल, पिया को अपना बनाने के बाद चलो हम जिनको अपना बनाना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग के भवसागर से अगर पार करना है तो पिया तो साथ में रहेंगे, पर कोई ऐसा है जो भवसागर के बाद भी आपको मिलेंगे, और वो कौन है? जी हाँ, वो है हमारे बजरंग जी बली जी, जिनके शक्ति जिनके आसीन कृपा से आज हम सब यहाँ पर है। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल जो ग्रुप आए हैं, इनके साथ आज हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। पर क्या बात करने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, बहुत ही कम समय में। सबसे पहले तो हम कहाँ से शुरू करें, इतने सारे टैलेंट आज हमारे स्टूडियोज में आकर बैठ गए हैं। हम कहा लेडीज फेस्ट करते हैं, लेडीज फेस्ट ही करते हैं ना, जो सदियों पुरानी जो है। आपको पता है रामायण में लेडीज फेस्ट का एक एग्जांपल है?
1: देखो, लेडीज के लिए रामायण सारा हुआ है।
0: जी हाँ,
1: महाभारत भी लेडीज के लिए हुआ है।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: तो उनको पहले रखना
0: उनके लिए नहीं हुआ है,
1: उनके उनकी खातिर हुआ है।
0: हमने एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुना था कि एक बार कहीं पर एक ट्रेन स्टेशन पर एक बाबा जी बैठकर, हमारे जैसे संत ही बैठकर, नो रामायण गा रहे थे, भगवान का नाम गा रहे थे, जो नौदा भक्ति गा रहे थे। तो कोई एक बहुत ही एजुकेटेड बंदे ने आकर पूछा कि आप यहाँ पर बीच में बैठकर रामायण खोलकर बैठे हो? कहा रामायण है, रामायण से जो ज्ञान मिलता है सबसे सबको फायदा होता है। देखा क्या रामायण में सबको पता है दशरथ के पिता कौन है, मुझे भी पता है, पूछिए कोई जी, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपका यहाँ पर आपका जो नॉलेज को नहीं वो करना, मैं तो ज्ञान बांट रहा हूँ। ऐसा हुआ, भाग दौड़ हुई, क्योंकि ये अपने फैमिली के साथ था, मिसेस के साथ था। बाबा जी पहले ट्रेन में चले गए, बाद में जब ये आया बंदा जो बोल रहा था, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को देखा, आपने मेरी पत्नी को देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या हुआ, कैसे हुआ? बाबा जी ने कहा अगर आप रामायण पढ़े होते तो आपको पता होता कि राम जी ने सीता माता को पहले नाव पर चढ़ाया था, बाद में खुद आया था। तो ये फायदा है हमारे रामायण से, और आज इसी के बारे में हम बात करने चलते। चले मोनिका जी, आपसे शुरुआत कर लेते। मोनिका जी सबसे पहले कैसे हैं?
2: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सब?
0: आप तो बिल्कुल बाली लग रही हो। सॉरी लेट मी करेक्ट, नॉट बाली, प्लीज करेक्शन। जय हनुमान,
2: जय हनुमान।
0: मोनिका जी कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया।
0: आज आप लोग यहाँ पर अपने टीम के साथ एक बहुत ही खास मकसद से आए हैं, जो एक हमारे जो एक बाबा जी है जिनके बारे में आज मैं पता नहीं कितने महीनों से कितने सालों से इनका एक जो अभी अगर मैं एक सेकंड के लिए अपना आग बंद भी कर लेता हूँ ना, वो जो एक आवाज़ आता है ना, जय हनुमान,
2: yes,
0: वो आप सबके कान में वो आवाज़ आ रहा है
2: जी।
0: तो मोनिका जी चलिए इस जो आने वाले संडे को जो हो रहा है इसके बारे में और बात करते हैं।
2: आने वाले संडे को जैसे आप हमारी सारी टीम आज हमारे साथ है, ये है हनुमत महागर्जना, और हनुमान जी की जो महिमा का गुणगान करेंगे वो बहुत ही रेनाउंड है, बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, उनको इंट्रोडक्शन की हमें ऐसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जैसे ही आंख बंद करके हनुमान
0: चालीसा
2: वो आवाज आती है, और उसी आवाज और उसी हनुमान चालीसा ने इतनी उनको पूरे अराउंड द ग्लोब उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली है। तो रसराज जी महाराज आ रहे हैं और उनका ये टूर चला आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सक्सेसफुल हुआ, न्यूजीलैंड में भी चल ही रहा है, ऑकलैंड में, वेलिंगटन में, और अब वो क्राइस्टचर्च आ रहे हैं हम सबके साथ अपने भजनों को शेयर करने के लिए। तो ये 2 तारीख को है, 2nd of August, ये संडे को एल्डर्स गेट सेंटर पे है, 5 बजे आपके गेट्स खुल जाएंगे, हम सब आप सबका वेट करेंगे। और अभी बाकी टीम हमारी आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इस इवेंट के बारे में बताएगी जो हमने अभी तक बोली नहीं है, तो आप जरूर आइए।
0: क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं जिस तरह जब हनुमान जी लंका पहुंचे और सीता माता के जब खोज अगले लंका, हनुमान जी को क्या था कि उनके सामने कुछ अगर जो सही गलत करने पर हनुमान जी को क्या कि वो सबके मदद करना चाहते थे। हनुमान जी का ये मकसद था कि सबके जिंदगी में जो भी उनके मनोकामनाएं वो पूरी हो, कोई उदास नहीं जाए। तो उसने ऐसा भी किया कि जिनको मारा भी ना बहुत प्यार से मारा, और जिनको सवारा भी ना बहुत ही प्यार से सवारा। तो अगले जिस पर्सन से हम बात करने में एक इवेंट हो रहा था मुझे पता है, और इवेंट में कुछ चेंजेस हुआ, पर हमारी चेतना जी वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना था, मेरे इतने कलाकार यहाँ पर बैठे हैं सुबह से, हनुमान जी

0: जिस तरह से बानर सेना को लेकर लंका पहुंच गए थे ना, चेतना जी ने कहा नहीं मेरे सेना यहाँ बैठे हैं, मेरे सेना आज बिना परफॉर्म करे हुए जाएंगे नहीं। तो चेतना जी आपका भी स्वागत है, आप हंस रहे हैं, आपको पता है मैं किस इवेंट के बारे में। चेतना जी आपका हमने हमेशा देखा है, आप लोग जब भी कहीं पर भी भगवान का राग राम का राग भी आ जाता ना, आप पहुंच जाते हैं अपने टैलेंटेड हैंडसम हस्बैंड के साथ, जिनसे हम बाद में नहीं बात नहीं करेंगे, बात तो उनसे हमेशा करते हैं, उनके आवाज में कुछ सुनेंगे। पर चेतना जी आप हमेशा की तरह एक इवेंट में फिर जुड़ चुकी हैं, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं अगर आप बुरा ना माने, जब भी आप भगवान का नाम सुनते हैं आप सब कुछ छोड़कर आप आ जाते हैं, क्या ऐसा क्या है कि आपको भगवान अपने पास खींचे लेकर आ जाता है?
1: मुझे आपकी बात सुन के बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और मैं नहीं बता सकती हूँ कि सच में माय हार्ट इज लाइक पंपिंग टू हियर योर वर्ड्स।
0: भगवान का नाम सुनकर,
1: मतलब भगवान का नाम सुनकर और ये सुनकर कि कहाँ पहुंची है मेरी किस्मत कि मेरा नाम भगवान के साथ जुड़ रहा है।
0: जी बिल्कुल, मैं
1: उनकी इतनी कृपा है मुझ पे और हम सब पे कि हम सच में वो बुला लेते हैं, जिससे उन्होंने जितनी सेवा करवानी होती है ना उसे बुला ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके। ये हमारी किस्मत है, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म है कि भगवान हमसे ये सेवा कराते हैं। और मुझे टाइम लगा आपकी बात को कनेक्ट करने के लिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। I could recall, जो भी हुआ इट वॉज फन, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था, और बिल्कुल उसी मजे के लिए हम लोग
0: एकदम तैयार है ना, पूरा टीम
1: तैयार है, पम्प्ड अप है एकदम। बहुत अच्छा फीलिंग होता है हर घर में जब इस तरह का कोई इवेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो हम लोग हमारे घरों में वो माहौल बन जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: उनकी सुबह होती है उन्हीं भजनों के साथ और वही सुनते हैं हर वक्त, वही मन में बजता है, खुद वही गुनगुनाते हैं। वो पूरा माहौल सिर्फ वहां क्रिएट नहीं होगा जहां हम पहुंचेंगे संडे के दिन दरसराज महाराज की कृपा से, वो सब माहौल पूरा कई दिनों से हम सबके घरों में, हम सब जहां मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां सब जगह बना हुआ है, हम सबके मन में आके बस गए हैं हनुमान जी और भगवान राम।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चले कहते हैं जब भी हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, अभी के ज़माने में कुछ ना कुछ फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, कितने भी हम कोशिश कर ले, पर ऐसे जब जहाँ ज़्यादा लोगों को लिए लोगों को लेकर आना चाहते हैं, जब सुंदरकांड में हनुमान जी विभीषण से मिले ना, विभीषण को हनुमान जी को अपना परिचय देना नहीं पड़ा, पता चल गया कि कौन है, क्योंकि उनके अंदर से वो राम जी का, जो राम जी का चमक है, राम जी का वो निकल रहा था ना। उसी तरह से जो अगला पर्सन जिनसे हम बात करना चाहेंगे, इनकी बिजनेस के यहाँ क्राइस्ट चर्च में कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बाय नाउ सबको पता है, फिर भी जहाँ पर हनुमान जी को देखा, राम जी को देखा, अपने अर्धांगनी को लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा अगर बात सिर्फ प्रमोशन की होती ना तो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे कहीं भी लगा देते, पर हम जानना चाहेंगे इनसे, इस पर्सन से जो मेरे भी बहुत करीब है, क्योंकि इनके घर पे एक ऐसा कोई है जिनसे हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का रिश्ता है। तो महेंद्र जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र जी ऐसा क्यों करते हो कि जहां पर भी भगवान का नाम आता है आप आ जाते हो? जैसे हमने कहा कि आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, पर पता है कुछ तो ऐसा है जो आपको इस नाम की तरफ खींचे हुए लेकर आ जाती है।
2: जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी का नाम मारुति प्रोडक्शंस ही है, तो जहां भी हनुमान जी या श्री राम का कोई जिक्र होगा तो वहाँ कोई भी सेवा किसी भी तरीके से संभव हो सके तो वो करना चाहेंगे, और वेरी फॉर्चुनेट एंड प्राउड कि हम थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जो भी छोटा मोटा हमारी तरफ से हो पा रहा है। एंड सो यू नो वी वांट टू इनवाइट एवरीवन, एंड यहाँ पे जस्ट शेयर करना चाहेंगे कि वी आर वेरी थैंक यू टू ऑल द पब्लिक एट क्राइस्ट चर्च की वी हैव सोल्ड आउट द एंटायर शो बेसिकली।
0: क्या बात, सोल्ड आउट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: सो वी जस्ट वांट कि थैंक यू, जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीवन, यस इट्स ऑन 2nd of August, शाम को 5 बजे डोर्स विल ओपन, वहाँ देर विल बी फूड अवेलेबल, प्लीज कम हैव फन, यू नो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू यू नो जस्ट बी यू नो जस्ट टू हैव अ स्पिरिचुअल नाइट अलॉन्ग विद मी, क्योंकि बाकी स्पॉन्सर्स नहीं है, सो मैं तो हूँ ही फ्रॉम मारुति फाइनेंशियल्स, बट आई जस्ट टेक नेम बिकॉज द स्पॉन्सर कुड नॉट कम। सो जतिन इज देयर फ्रॉम कोलंबो लॉज, अंशुल इज देयर फ्रॉम क्लाइन रियल एस्टेट, फिर देव चक्रवर्ती इज फ्रॉम लिंक बिजनेस सॉल्यूशंस, एंड देन वी हैव दिली you know from taxi services, we also have Print Pro who's helped us, and Royal Decorators also who's helped us in, you know, so kafi sare logon ne costing in terms of

0: They've helped
1: साथ में मिलकर जी बिल्कुल
0: एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू यू गाइस टू बीइंग यू नो आवर मीडिया स्पॉन्सर्स सो यू नो थैंक फॉर सपोर्टिंग अस सो या दैट्स इट बेसिकली
1: थैंक यू
0: एंजॉय फन
1: थैंक यू आई मुझे एक बात बहुत अच्छा लग रहा है कि चेतना जी ने भी कहा मोनिका जी ने कहा आपने भी कहा इंजॉय ये जो शब्द है ना अभी जितने लोग कहीं पर अभी लाइव देख रहे हैं बाद में भी लाइव देखेंगे खुद से ये सवाल कीजिए मुझे नहीं मुझे मत बताइए दर्पण में देख के खुद ही बताइए आखिरी बार आपने कब दिल से हंसा या कब दिल से इंजॉय किया तो जब हम ऐसे जगह चले जाते हैं ना तब दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड इंजॉय क्योंकि हमें पता है भक्ति के साथ साथ जब हम भगवान के चरणों में चले जाएंगे ना सब सब सब दुख दुख तकलीफ भूल जाते हैं कहते हैं कि सरस्वती माता जिनके जिब्बा पे बैठते हैं ना अगर सही जिब्बा पे बैठते गलत जिब्बा पे बैठते हैं तो मंत्रा कुंभकर्ण जैसे गलत बात और अगर सही जिब्बा पर बैठ गए ना तो पूरी दुनिया उनके पीछे चली जाती है जहाँ पर जैसे हमारे रसराज जी आ रहे सही जगह पर बैठे हैं सरस्वती माता इसीलिए उनके गीत सुनने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज एक ऐसा मेरा क्या भाई छोटे भाई बोल सकता हूँ जिनके जिब्बा पे सरस्वती माता बैठी हुए जब जब गाते हैं तो लोग मगन हो जाते हैं इसीलिए मैंने कहा कि आज मुझे इनसे बातें नहीं सुननी है मुझे इनसे गाना सुनना है तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि मनीष जी से बात करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है उसको मैं मुझे ऐसे वैसे पता है ऑन द स्पॉट डालेंगे तो वो कर ही देंगे मनीष जी से बात करेंगे जब माइक उनके पास आएंगे तो पहले हम उनके मधुर आवाज में हनुमान जी के बारे में दो तीन लाइन सुनेंगे या फिर उसके बाद आगे चलेंगे अगर तैयार है तो फ्लोर इज ऑल योर्स
2: अब मनीष जी से
1: जी हाँ मनीष जी से मनीष जी अब मनीष जी इतने दूर क्यों बैठ गए यार
3: हम, नहीं, मैं तो हम
1: बहुत, आज हम बहुत अच्छी तरह से जीबीजी के कोरियन प्रोडक्ट से साबुन लगाकर नहाकर आए हैं पास आ जाइए आप शर्माइए मत मनीष जी से हमारी मुलाकात 2016 में हुई थी 10 साल की हमारी दोस्ती है और दिन दिन बाद मिलते हैं क्योंकि मनीष जी भी बहुत बिजी हम भी बहुत बिजी रहते हैं पर चलो आज हमारी मुलाकात हो गई है भाई आप भी जब भी हमने देखा है कि ऐसे कार के लिए आप हमेशा आगे बढ़ते हैं आपने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से सिखा के रखा है तो ये जो इवेंट हो रहा है इसमें आप किस तरह से क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप आओगे मेरी तरह बाकी भक्तों की तरह आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो
3: बजरंगबली की सेवा
1: क्या
3: बजरंगबली हनुमान महागर्जन
1: जी
3: सो बस वही बहुत कुछ बोलता है हनुमान महागर्जन कहां बजरंगबली की कृपा से कैसे कैसे जुड़ गए हम हमें पता नहीं था कि इतना कुछ इतने कम शॉर्ट टाइम में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो बस बजरंगबली की कृपा और वही करने आए हैं जय बजरंगबली सारे लोग जुड़े इंजॉय की बात हो रही है तो ये भक्ति में इंजॉयमेंट है
1: क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल सही
3: और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है पूरे अभी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं सारे लोग परेशान हैं इस तरह की परेशानी इधर की परेशानी उधर की परेशानी जब यहाँ हम बैठेंगे हनुमान जी की सेवा में और जब वो भक्तिमय वातावरण जब बनेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही निकलने लगेंगी फिर पता नहीं चलेगा कि हम उन दो चार घंटे जितने भी बैठे हैं जैसे आपने बोला कि किसी तरह का कोई टेंशन कुछ नहीं वहाँ रहेगा
1: कुछ बिल्कुल
3: हमारी आत्मा शुद्ध होगी हमारा मन शुद्ध होगा और सबसे बड़ा चीज़ हमारा क्राइस्ट शहर शुद्ध हो रहा है
1: क्या बात है
3: कि वहाँ वो कृपा होगी
1: बहुत सुंदर और अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद आपसे भी मुलाकात हुई हमें मालूम है कि आप हमेशा ऐसे कार्य में आगे रहते हैं और बच्चों के साथ आए हैं आई थिंक आप बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेटअप कर रहे हो कि बच्चों को ऐसे कार्य में आगे बढ़ाना चाहिए तो चले जो जो लोग देख रहे हैं आप भी अपने बच्चों को इस कार्य में आगे बढ़े और आपके बच्चों को भी अगर हमारे अगले स्टार की तरह गाना है या उसकी तरह गुनगुनाना है तो फ्लो इज ऑल योर्स
2: जय सियाराम सबसे पहले तो केजी लोकल रेडियो के सारे श्रोताओं को और दर्शकों को जो फेसबुक पे लाइव आए हैं हमारी तरफ से जय सियाराम अबाउट द प्रोग्राम सभी लोगों ने बता चुके हैं बट एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि मारुति प्रोडक्शंस और हनुमान मंदिर वेलिंगटन आर ब्रिंगिंग पंडित जसराज जी रसराज जी महाराज और रसराज जी महाराज एक ऐसा नाम है जो कि इंट्रोडक्शन का मोहताज
1: नहीं
2: है
1: बिल्कुल
2: और जो जो लोग भक्ति संगीत पसंद करते हैं वो रसराज जी के भजन ना सुने ऐसा नहीं हो सकता है और रसराज जी अब एक ध्रुपद स्टाइल में गाते हैं हनुमान जी के सबसे ज़्यादा गाते हैं वो कहते हैं कि राम जी का नाम लो तो हनुमान जी आ ही जाते हैं यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अब हनुमान जी को राम

0: राम बोलो तो हनुमान जी को अपना आपका राम राम भी मिल जाएगा और हनुमान जी से आपको जवाब भी आ जाएगा। तो
1: जी
0: आपको हनुमान जी को अगर नमन करना है तो आप जय हनुमान बोलने की जगह जय श्री राम बोलो, तो हनुमान जी आपको आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो राम जी का नाम को कभी मना नहीं कर पाएंगे। तो राम जी के नाम के साथ आप सबको हम इनवाइट करना चाहते हैं इस भजन के कार्यक्रम में, जो कि दो परसों संडे को होने वाला है। शाम को 5 बजे से हम गेट ओपन कर देंगे। आप आइए अपने सारे सारे परिवार दोस्तों के साथ आइए। देखिए जिन्होंने बुकिंग की हम उनको भी शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोगों की जो श्रद्धा और भक्ति की तरफ जो प्रेम है उसकी वजह से हमारा शो ऑलरेडी फुल हो चुका है एंड वी हैव टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशंस नाउ। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनको हमारा विनम्र निवेदन है कि प्लीज अपने समय से आ जाएं 5 बजे और अपनी अपनी सीटें पकड़ लें, क्योंकि सीटों में हमारे नंबर्स हैं लेकिन सीटों में प्रेफरेंसेस नहीं है। तो जहां पर जितनी जल्दी जो
1: जी
0: आएगा
1: बिल्कुल
0: उतने करीब महाराज जी के पहुंच पाएगा। और ऑफकोर्स भक्ति संगीत में जैसा सब लोग ने कहा है, भक्ति संगीत में जो एंजॉय करता है वो लीला, मतलब वो लीला जो है वो अपरंपार है। तो जरूर आइए, सारे लोग आइए। और एक हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब हम राम नाम लेते हैं तो हनुमान जी वहां पर होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक
1: आई
0: एक
1: एग्री।
0: बहुत छोटा सा किस्सा है जो कि एक पंडित जी इंडिया में बोलते भी हैं कि एक जो राम भक्त थे वो हमेशा जब पूजा करते थे हनुमान जी का नाम लेते थे तो अपने साथ में एक आसन रखते थे।
1: जी
0: ये बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है जो शायद सब लोगों ने सुना हो, लेकिन नहीं सुना उनके लिए बहुत ये छोटी सी बात है कि
1: जी
0: वो हमेशा एक आसन लेके पूजा करते थे, हनुमान चालीसा का पठन करते थे और वो बिलीव करते थे कि हनुमान जी वहाँ बैठे
1: आकर
0: हैं। तो
1: बैठते
0: जो
1: हैं जी।
0: लोग उनके साथ में थे वो उनका कभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन उन लोगों ने उनसे बोल दिया पंडित जी से कि आप ये आसन क्यों रखते हो, आप ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने बोला क्योंकि वहाँ हनुमान जी साथ में होते हैं, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं। उनको प्रूव करने के लिए बोला आप ये साबित करो, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, मैं जब श्री हनुमान चालीसा का पठन करूंगा आप आके देखना वहां होंगे हनुमान जी।
1: जी
0: उन्होंने स्टार्ट किया और जब वो खत्म होने वाला था तो सब लोगों ने बोला कि अब कहाँ है, तो आप बोले जो हनुमान जी का आसन है आप उसको उठा के देखो। उन्होंने जितने लोग आए थे एक एक करके सबने नहीं, सब लोगों ने एक साथ मिलकर भी हिलाने की कोशिश किया, वो आसन टस से मस नहीं हुआ। तो आप ये सबूत है इस बात का कि जहां हम लोगों ने भक्ति भाव में राम जी का नाम लो हनुमान जी का वहां साक्षात्कार होता ही है। इसी तरह हम लोग जो प्रोग्राम करने वाले रसराज जी जो है वो शायद राम जी के भजन से ही शुरू करें करते ही हैं वो, बट वहां पर हमारे साथ साथ साक्षात हनुमान जी हमारे साथ होंगे।
1: बिल्कुल
0: तो इस अनुभव का कोई सीमा नहीं होगी, तो आइए इस अनुभव को लीजिए और सारे लोग बोल रहे हैं भक्ति भाव में एंजॉय करिए।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और जैसे आपने कहा है, मुझे याद है जब हम फिजी में छोटे छोटे थे तो हमें हमारे मंदिर में कीर्तन सिखाया जाता, जो राम जी का कीर्तन था। बहुत मुझे आज भी वो कीर्तन याद है कि कामना बनेगा श्री राम के बिना, राम
0: राम जी
1: नाम
0: चलेगा
1: लेगा हनुमान
0: हनुमान
1: के
0: के
1: बिना।
0: बिना।
1: कि जहाँ पर राम जी के नाम लेते, पर आपने एक बहुत ही सुंदर बात की कि लोग मजाक उड़ा रहे थे। आई थिंक हमारे यहाँ पर जब कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमने रामायण का थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास आ गया ना, तो ही और शी हैज़ द राइट टू करेक्ट एवरीबॉडी कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जब भगवान डिफरेंस नहीं देखते ना, जब जैसे मैंने कहा कि हमें जब भी मौका मिलता है हम सुंदर कांड पढ़ लेते हैं, और अब आप सबको आपको पता होगा 19 सितंबर को हम अपना कैजे लोकल के साथ मिलकर, हमारे क्राशेज लोकल के साथ मिलकर रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स लेकर आए। वहाँ पर हमने दिखाया कि जब विभीषण जी आकर हनुमान जी से ये पूछते हैं कि क्या राम जी में अपनाएंगे, तो हनुमान जी ने बोला क्यों क्यों नहीं अपनाएंगे। विभीषण कहते हैं मैं तो राक्षस कुल का हूं ना, उनका भाई हूं जिन्होंने उनकी धर्म पत्नी को उठा कर लेकर गया रखा है। तो हनुमान जी मुस्करा कर क्या बोलते हैं कि राम जी बानर को अपनाए, राम जी ने बारन को गने लगाया, अब तो फिर भी इंसान हो। तो जब राम जी डिफरेंस नहीं देखते हैं, राम जी फर्क नहीं देखते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले। तो राम जी को यहाँ चाहे राम जी की आवाज़ यहाँ पर पहुँचाना हो या हनुमान जी का आवाज़ यहाँ पर पहुँचाना हो, अगर ये बंदा क्राइस्टचर्च में नहीं होता तो शायद हम सबको टिकट लेकर कभी वेलिंगटन, कभी ओकलैंड, कभी इंडिया जाना पड़ता। पर जब से ये बंदा जो आया है ना, पहले तो हमारे साथ कृष्णा और सुदामा वाली दोस्ती की है, बाद में ऐसे ऐसे बाबा जी को आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि हमारे क्राइस्टचर्च को आपने इतना शुद्ध कर दिया है ना कि अगले काफ़ी सालों तक लोग दुनिया दुनिया के कोने से यहाँ क्राइस्टचर्च में इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर आपने पहले भी किया है और आज एक बार फिर आप रसराज जी को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए ऐसा काम आप करते क्यों, ये मैं

0: नहीं करता जी, ये मेरे से करवाया जाता है।
1: करवाया जाता है, अच्छा।
0: और करवाया भी भगवान के द्वारा, ये करवाया जाता है।
1: क्या बात है।
0: हम चाह के भी अपना ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो भगवान का हो, जब तक भगवान की मर्जी ना हो। तो मैं ये एक हनुमान जी, हनुमान चालीसा की जो चपाई है वो उससे शुरू करता हूँ कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु को डरना, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोका हाते कापे। तो हनुमान जी ही करता है, हनुमान जी ही श्रोता है, हनुमान जी ही सब कुछ है इस प्रोग्राम में। और हमारे रसराज जी महाराज जो ऑलरेडी जो जिन पर हनुमान जी की बहुत कृपा है, और वो बोलते भी हैं अपने आप को कि मैं हनुमान जी का कृपा प्राप्त हूँ, तो वो हनुमान जी ही उनके गुरु हैं। तो अब क्राइस्ट चर्च में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं बहुत अभी अपने दिल से बहुत सबको धन्यवाद कर रहा हूँ, पूरे क्राइस्ट चर्च को, जिन्होंने इतना प्यार ये प्रोग्राम को दिया और आज वो सोल्ड आउट हो गया जी। ठीक है,
1: बात है।
0: और इतना धार्मिक जो प्रोग्राम यहाँ पे अभी ये होगा, हम सब लोग जो हैं मन से सबसे थैंक यू बोल रहे हैं कि आप लोग हमेशा हमें ऐसे प्यार करते रहें, और हम कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम और ऐसा कार्यक्रम हम करते रहें जिसमें और तो कुछ नहीं, एक पॉजिटिविटी होती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। जब बंदा थक जाता है शाम को, थक के जब वो सुबह उठता है मंदिर जाता है, तो इसलिए जाता है कि उसको एक पॉजिटिव बूस्ट अप चाहिए होता है कि मैं सारा दिन उस बूस्ट अप में अपना काम निपटा लूँ। वो थक के जब शाम को जाता है घर पे मंदिर में, तो फिर उसको वही बूस्ट चाहिए होता है कि मैं कल सुबह फिर जाऊँगा
1: जी।
0: तो ये है भगवान की शक्ति और भगवान की पॉजिटिविटी जो हम भगवान का नाम लेते हैं हर रोज। तो मेरी तरफ से सबको थैंक यू, और आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, आगे भी मेरे को उम्मीद है आप हमें ऐसे ही साथ दोगे, और हमें भी भगवान इतनी सहन शक्ति दे या इतनी कृपा हम पर करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान का और ये ऐसे अच्छे कार्यक्रम और ऐसे संत महात्मा जो हैं वो अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं। तो मैं बहुत ग्लैड हूँ कि ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं और भगवान ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से आपने जो बताया है।
0: एक चीज मैं और मेंशन कर रहा हूँ कि सोल्ड आउट तो ये हो गया है, और यहाँ पे आपको फूड अवेलेबल रहेगा, डिनर अवेलेबल रहेगा, तो आप लोगों को कहीं बाहर जाने की दिक्कत नहीं होगी। जो लोग बच्चों के साथ आएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे, तो वो अपना फूड वहाँ पे अरेंजमेंट्स हमने किए हुए हैं,
1: सब कुछ का आपने, भजन के साथ भोजन सब कुछ आपने अरेंज किया। हाँ,
0: तो जो हम कर सकते हैं, भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम वो कर रहे हैं।
1: कहा कि क्यों करते हो ऐसे काम आप?
0: इसलिए क्योंकि भगवान की
1: कृपा है
0: भगवान की कृपा है और हम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है।
1: हाँ, ये बड़ी बात है,
0: हनुमान जी की कृपा है।
1: आपने सभी लोगों ने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान चालीसा में आता भी है ना, तुम रो मंत्र माना लंकेश्वर भाई सब जाना। तो सिर्फ आपको सब जग के पास नहीं जाना है, आपको क्राइस्टचर्च जाना है। शेषनाथ जी, चले हम आपसे शुरुआत करते हैं। पोस्टर आप लोगों के सामने है, आप प्लीज हमें बताइए हमारे मेजर स्पॉन्सर्स कौन है, आप हमें बताएंगे कब और कहां से हो रहा है। महेंग जी, आप हमारे जो बाकी स्पॉन्सर्स को अगर कवर कर सकते हैं, सो दैट नो वन्स लेफ्ट आउट, आप अगर हनुमान जी के लिए दो लाइन गा दे, और मनीष जी और हमारे सुदामा जी आपकी तरफ से एक ऑफिशियल सादर आमंत्रित सबके लिए। चलिए जितना जी,
2: एक आगे बढ़ने के पहले जस्ट एक क्विक क्वेश्चन जो कृषि के, इसमें एक पर्सनल मैसेज आया हुआ है कि अगर ये शो सोल्ड आउट है, मतलब कोई और नहीं आ सकता जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, इज दैट ट्रू? ओके, सो अनफॉर्चुनेटली क्राइस्टचर्च जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया है, शो सोल्ड आउट है,
0: वो मिस कर चुके हैं ये जो अपॉर्चुनिटी है, बट कोई बात नहीं, इट इज नॉट लाइक वन टाइम, आगे चलता रहेगा और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम इससे बड़ा वेन्यू हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्राइस्टचर्च के बंदे हैं वो रीच कर सके।
1: क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतना जी, चले आपसे शुरुआत करते हैं।
3: कुछ भी और कहने से पहले पहले मैं कनेक्ट करूंगी जो आप कह रहे थे, जो आप बात कर रहे थे कि एक है सुख हमें जीवन में जो जी मिलता है, एक खुशी है जो हमें यहाँ मिलती है, और एक है आनंद जो हम अब करने जा रहे हैं ना अनुभव, वो आनंद है जिसका कोई सिनोनिम नहीं होता, जिसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जो सिर्फ हमें सिर्फ भगवान से मिल सकता है। तो ये जो हम वंस इन अ लाइफ टाइम डिवाइन एक्सपीरियंस इस संडे को हम करने वाले हैं, वो एक आनंद की अनुभूति है जो हम सबको जरूर करनी है। शो सोल्ड आउट है, इसलिए मैं और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन सभी लोगों से

जिनको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी वो बुक कर पाए ऑन टाइम, जरूर जरूर जरूर पहुंचिए, ऑन टाइम पहुंचिए और आकर आनंदमय अनुभूति कीजिए. एंड टू टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पॉन्सर्स, आई विल मेंशन क्लाइन, आई विल मेंशन